तो नहीं मैंने लो किंतु का समय तो उनसे पन ला निम्न रोम तो पतुम्पा